कभी हीर तो कभी रांझा बेवफा हुआ था, मैंने ये बस कहानियों में सुना हुआ था। तेरे बाद ये धड़कता हुआ पुर्जा वहां भी ना लगा जहां लगा हुआ था। उतने ही करीब आ गई थी मौत जितने करीब तो उसके खड़ा हुआ था, जितने करीब तो उसके खड़ा हुआ था।

0: तू वो जा रहा है कोई शबोगम बुझा वीरा है मैं कदा खुम सागर उदास तुम क्या गए के रूप गए दिन बाहर
1: चले गए सब खाना खा के दारू पी के चले गए
2: सब खाना खा के दारू पी के चले गए
3: सब खाना खा के दारू पी के चले गए
4: चले गए चले गए

ना दुनिया के लिए लिखते ना मेरे लिए लिखते, ना दुनिया के लिए लिखते ना मेरे लिए लिखते, गालिब जिंदा होते तो तेरे लिए लिखते, गालिब जिंदा होते तो तेरे लिए।

Yes, sao deyin? Oh yeah, baby.

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Hindi on mobile, online and on radio.
1: आप सुन रहे हैं SBS Hindi मोबाइल, ऑनलाइन और रेडियो पर.
2: SBS Hindi के दैनिक रेडियो कार्यक्रम में आपका स्वागत है. ये है 24 मई 2026 की एक रविवार वाली शाम और आप सभी को वृषाली जैन का प्यार भरा नमस्कार. कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहद मस्त होंगे. आज का SBS Hindi कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम इस धरती के पूर्वजों कैम्बरगिल राष्ट्र के लोगों और उनके बुजुर्गों को सम्मान के साथ प्रणाम करते हैं. हम उन सभी अबोरिजिनल और टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर भूमि के पारंपरिक मालिकों को भी आदर पूर्वक याद करते हैं जिनकी धरती पर ये कार्यक्रम आज सुना जा रहा है. दोस्तों, आज चलाते हैं किशोर कुमार के गीतों की रेलगाड़ी. तो बताइए मुझे, आपको किशोर कुमार का कौन सा एक ऐसा गीत है जो बहुत पसंद है? 04397997667 हमारा नंबर है. कार्यक्रम में आपके लिए सबसे पहले लेकर के आऊंगी संक्षिप्त समाचार, जिसके बाद बात करेंगे हम लोग कि ऑस्ट्रेलिया में करियर बदलने के लिए आपके पास क्या विकल्प मौजूद हैं. इसके बाद सप्ताह भर की खबरों की चर्चा रहेगी न्यूज रैप में, जिसके बाद लेकर के आऊंगी एक फिल्मी डायरी जो की आधारित है दीपिका पादुकोण की जिंदगी.

की पर, और इसके बाद चलाएंगे किशोर कुमार के गीतों की रेलगाड़ी। तो बताइए मुझे कि किशोर कुमार के ऐसे कौन से गीत है जो आपको बहुत पसंद है। 04397997 हमारा नंबर है, भेजिए संदेश। तब तक आपके लिए लेकर के आती हूँ क्या संक्षिप्त समाचार। पेश है आज के संक्षिप्त समाचार विशाली जैन के साथ। वरिष्ठ लिबरल नेताओं का कहना है कि निवेशकों को मिलने वाले टैक्स प्रोत्साहनों में कटौती करने के बजाय उन्हें बढ़ाया जाना चाहिए, जबकि सरकार अपने बड़े टैक्स सुधार प्रस्तावों को संसद से जल्द पारित कराने की तैयारी में है। व्यापार जगत के नेताओं ने चेतावनी दी है कि मई में पेश बजट के तहत प्रस्तावित बदलावों से निवेश और प्रतिभाएं विदेशों की ओर जा सकती हैं। प्रस्तावों में मौजूदा 50% कैपिटल गेन्स टैक्स छूट को हटाकर न्यूनतम 30% टैक्स दर लागू करने की बात शामिल है। साथ ही पहले से मौजूद संपत्तियां खरीदने वाले निवेशकों के लिए नेगेटिव गियरिंग खत्म करने का प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। विपक्ष के आवास मामलों के प्रवक्ता एंड्रू ब्रैक का कहना है कि वे छूट खत्म करने के बजाय उसे बढ़ाने के पक्ष में हैं। उनका कहना है कि अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ाने के लिए टैक्स में कटौती की जानी चाहिए। इसी बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अभी बंद है और आपूर्ति में रुकावट के कारण वैश्विक कीमतों पर दबाव बना हुआ है। इसके बावजूद नई आर्थिक रिपोर्टों से संकेत मिल रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में महंगाई दर में कमी आ सकती है। नेशनल ऑस्ट्रेलिया बैंक, कॉमनवेल्थ बैंक और ANZ के अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि बुधवार को जारी होने वाले ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के आंकड़ों में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मार्च की 4.6% वार्षिक दर से नीचे आ सकता है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि ये गिरावट मुख्य रूप से फ्यूल टैक्स में अस्थायी कटौती के कारण हो सकती है, न कि महंगाई के मूल दबाव में कमी की वजह से। पेट्रोल की कीमतों में महीने भर में करीब 9% की गिरावट आई है, जबकि डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी जारी रही है। वहीं क्वींसलैंड पुलिस का कहना है कि घरेलू हिंसा की एक शिकायत पर कार्रवाई के दौरान एक व्यक्ति ने कथित तौर पर पुलिस कर्मियों पर राइफल तान दी, जिसके बाद पुलिस ने गोली चलाई और इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। पुलिस रविवार तड़के ब्रिस्बेन के उत्तर में नारंगबा स्थित एक घर में पहुंची थी, जहां एक व्यक्ति के हथियार से लैस होने और धमकी देने की सूचना मिली थी। पुलिस के अनुसार अधिकारी घर के मुख्य दरवाजे पर एक व्यक्ति से बात कर रहे थे, तभी कथित तौर पर हथियारबंद व्यक्ति वहां पहुंचे और पुलिस कर्मियों को धमकी दी। मामले की जांच पुलिस एथिकल स्टैंडर्ड कमांड, अपराध और भ्रष्टाचार आयोग की निगरानी में करेगा, जबकि मामले को कोरोनर के पास भेज दिया गया है। दूसरी ओर क्वींसलैंड पुलिस ने पुष्टि की है कि उत्तर क्वींसलैंड में रविवार को शार्क के हमले में 39 वर्षीय एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। उन्हें हल रिवर हेड्स बोट रैंप के पास पानी से निकाला गया और दोपहर के आसपास एम्बुलेंस कर्मियों ने उनका उपचार किया, लेकिन घटनास्थल पर ही उनकी मृत्यु हो गई थी। पुलिस के अनुसार यह हमला कैनेडी शोल नामक इलाके में हुआ। मामले में अब कोरोनर के लिए एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है। और अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमेरिका और ईरान के बीच जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए समझौते पर काफी हद तक बातचीत पूरी हो चुकी है। इस प्रस्ताव में वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से पूरी तरह से खोलने के कदम भी शामिल बताए जा रहे हैं। हालांकि इस्लामाबाद में हुई ऐतिहासिक आमने सामने की वार्ताओं समेत कई हफ्तों की बातचीत के बावजूद अभी तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तक पूर्ण पहुँच बहाल नहीं हो सकी है, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति प्रभावित है। वहीं ट्रंप की घोषणा के बाद ईरान की फार्स समाचार एजेंसी ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच हुए नवीनतम मसौदे के अनुसार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का प्रबंधन ईरान के ही पास रहेगा। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई का कहना है कि समझौते का अंतिम स्वरूप अभी तय नहीं हुआ है। और अब अंत में खबरें भारत से। भारत में सुप्रीम कोर्ट ने त्विशा शर्मा मृत्यु मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए इसकी सुनवाई 25 मई को तय की है। ये मामला युवती की वैवाहिक घर में हुई कथित अस्वाभाविक मृत्यु और जांच प्रक्रिया पर उठे सवालों को लेकर चर्चा में है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच मामले की सुनवाई करेगी। अदालत ने जांच प्रक्रिया में पक्षपात और प्रक्रियागत खामियों के आरोपों पर चिंता जताई। CJI ने कहा कि न्यायपालिका की छवि पर उठ रहे सवालों के बीच मामले की निष्पक्ष जाँच स्वतंत्र एजेंसी से होनी चाहिए। इसी बीच एम्स दिल्ली के 4 वरिष्ठ डॉक्टरों की टीम भोपाल पहुंचकर त्विशा शर्मा का दूसरा पोस्टमार्टम करेगी। इससे पहले हाईकोर्ट ने परिवार की याचिका पर दूसरे पोस्टमार्टम और CBI जांच की मांग पर आदेश दिए थे।

0: इसी के साथ 24 मई 2026 के संक्षिप्त समाचार यहीं समाप्त होते हैं। और अब संक्षिप्त समाचार के बाद आइए समझते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में करियर बदलने के ऑप्शंस कैसे अवेलेबल हैं आपके लिए, यानी क्या संसाधन हैं, क्या रिसोर्सेज हैं, कैसे इसको एक सरदर्द प्रक्रिया ना बनाते हुए आप इसको एक अवेयर प्रोसेस बना सकते हैं, यानी जिस बारे में आपके पास पूरी जानकारी हो या ये तो पता हो कि कहाँ पर बात करी जा सकती है। तो ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन्ड के इस अंश में आज समझेंगे कि करियर बदलना हो तो कहाँ जाएं, किससे बात करें, कहाँ रिसोर्सेज देखें। बड़ा अच्छा अंश है, मुझे आपके लिए लाने में इसको बड़ा मज़ा आया। तो आइए मिल करके सुनते हैं। और इसी के साथ मुझे ज़रूर बताइएगा आपका किशोर कुमार का फेवरेट सॉन्ग कौन सा है। 04397997667 हमारा नंबर है।
1: आप सुन रहे हैं ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन्ड, SBS ऑडियो पॉडकास्ट जो आपको ऑस्ट्रेलिया में रहने के तरीके में मदद करता है।
0: अपनी नौकरी या करियर के बारे में दोबारा सोचना बिल्कुल सामान्य है। कुछ लोग नए अवसरों की तलाश में हैं, तो कुछ ऐसे काम की खोज में हैं जो उनके कौशल, मूल्यों या परिस्थितियों के बेहतर अनुरूप हो। करियर बदलना एक चुनौतीपूर्ण कदम हो सकता है, चाहे आप अपने कामकाजी सफर की शुरुआत में हो या कई सालों का अनुभव रखते हो। ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन्ड के इस अंश में हम आज जानेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में करियर बदलने की प्रक्रिया कैसी होती है, विश्वसनीय जानकारी कहाँ मिलेगी, किस तरीके की मदद उपलब्ध है, और अगर अंग्रेजी आपकी पहली भाषा नहीं है तो प्रक्रिया को कैसे साधा जा सकता है। साथ ही विशेषज्ञों से समझेंगे कि किन क्षेत्रों में नौकरियां बढ़ रही हैं और किन कौशलों की मांग ज्यादा है। अगर आप सोच रहे हैं कि अब अपने करियर में नई दिशा लेने का समय आ गया है तो आप अकेले नहीं हैं। 2024 के एक सर्वेक्षण के अनुसार ऑस्ट्रेलिया में हर दो में से एक कर्मचारी इसी स्थिति में है। कई लोगों के लिए करियर बदलना नए सिरे से शुरुआत करना नहीं बल्कि अपने मौजूदा अनुभव और कौशल पर आगे निर्माण करना होता है। करियर कोच एलिस चुंग का कहना है कि आजकल वे ऐसे बदलाव पहले से कहीं ज्यादा देख रही हैं।
2: Career change is absolutely becoming the norm, and we saw that through the COVID pandemic because people were at home and really finding a different way of life. And maybe through that experience, many realized that their work no longer aligned to their values, their well-being, their lifestyle goals.
0: आम धारणा है कि करियर बदलना कम उम्र में ज्यादा आसान होता है, लेकिन करियर कोच चुंग का कहना है कि उम्र या जीवन का कोई चरण बाधा नहीं है। अगर लोग चाहें तो किसी भी उम्र में करियर बदल सकते हैं। वे ये भी मानती हैं कि ऑस्ट्रेलिया में हाल ही में आए प्रवासियों के पास कुछ नौकरियों के लिए जरूरी स्थानीय अनुभव की कमी हो सकती है, इससे आत्मविश्वास प्रभावित हो सकता है। लेकिन वे कहती हैं कि अपने कौशल और प्रतिभा पर भरोसा करना बहुत आवश्यक है।
2: So I say the first thing is sit down and really sell yourself. What am I good at? What are my strengths? What else can I bring compared to a local applicant? And then really go through selling yourself on that resume, going to interviews with confidence, and even if language might be your barrier. I think nowadays in Australia, I mean, everyone's got an accent, really. And so as long as people can understand you, and then obviously really work on your self-worth, and don't be afraid if you get a no, you've just got to keep going until you find that first step.
0: कभी-कभी डर लोगों को आगे बढ़ने से रोक देता है, खासकर तब जब करियर बदलना जोखिम भरा या अनिश्चित लगता हो। लेकिन करियर बदलना हमेशा एक बड़ा कदम उठाना ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। एलिस चुंग कहती हैं कि आप इसे धीरे धीरे भी कर सकते हैं और पूरी तरह निर्णय लेने से पहले नई दिशा को आजमाने के कई तरीके होते हैं।
2: Why not set up a side business or a passion project, explore what you like, build up some skill sets, if anything, and then once you're comfortable, you can perhaps transition into that full time. And you don't have to do it alone would be my final tip. There are organizations out there who can help you, universities, local councils, you've got government support, as well as professional coaches out there who have been down your path.
0: सरकारी सेवाओं के माध्यम से भी सहायता उपलब्ध है। आप अपने राज्य या क्षेत्र की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए नई स्किल्स सीखने यानी रीस्किलिंग, व्यावसायिक शिक्षा और अपने इलाके में नौकरी के रुझानों से जुड़ी जानकारी और मदद प्राप्त कर सकते हैं। कुछ राज्यों जैसे विक्टोरिया

0: Hits from Home.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: से ऑस्ट्रेलियाई श्रम बाजार की जानकारी मिलती है और ऐसे टूल्स भी उपलब्ध हैं जो करियर बदलने की प्रक्रिया को समझने और आगे बढ़ने में मदद करते हैं। जैसे एक विकल्प है yourcareer.gov.au वेबसाइट, जहां आप नए करियर विकल्पों को खोज सकते हैं, अपनी स्किल्स की कमी यानी स्किल गैप को समझ सकते हैं और ये देख सकते हैं कि किस तरीके की ट्रेनिंग की आवश्यकता है। Victorian Skills Authority से Greg Robertson बताते हैं।
5: Mainly it's an online search engine where you really can put in a lot of questions about areas that you would like to think about changing your career to. It will feed back information like potentially what are the job prospects, what are the wages outcomes, and what would be the courses or units that would most prepare you to be competitive for some of those jobs.
4: ऑटोमेशन के कारण उद्योगों और कार्यस्थल की संस्कृति में तेजी से बदलाव आ रहा है और ऐसे में नए कौशल सीखना यानी अपस्किल करना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी होता जा रहा है। जो कर्मचारी नई तकनीकों के साथ खुद को अपडेट रखते हैं उनकी मांग अधिक रहती है। अगर आप नए कौशल सीखने के लिए तैयार हैं तो अपने करियर लक्ष्यों के अनुरूप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI से जुड़ी ट्रेनिंग जैसे कोर्स या सर्टिफिकेशन पर विचार करना फायदेमंद हो सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड बिजनेस स्कूल से वरिष्ठ लेक्चरर डॉक्टर कैरोलाइन नाइट इस बारे में विस्तार से बताती हैं।
6: I think, you know, industries are particularly looking for people with AI competency. Workplaces are changing, not just in terms of where, when and how it works, but all the different technologies are evolving very fast. It means younger generations will need to be very adaptable. And have those competencies with using AI and different types of AI.
4: मौजूदा और भविष्य के नौकरी बाजार के रुझानों की बात करें तो तकनीक ये भी बदल रही है कि लोग कैसे और कहां काम करते हैं। कई उद्योगों में हाइब्रिड वर्क यानी ऑफिस और घर से काम करने का मिश्रण अब स्थायी रूप से बना रहने वाला है। डॉक्टर नाइट समझाती हैं।
6: People are sort of expecting that flexibility now and they feel more able to ask for it because it feels like there's been a culture shift in terms of, you know, now technology needs have improved so that we can work from home much more easily. You know, security has improved in many ways in the platforms that we're using. So the option is there to work from home. We've had that, you know, natural experiment with COVID where everyone was working at home and actually things didn't fall apart. Obviously, frontline workers are never going to be able to work from home, at least all the time. But in most industries, there's still roles where potentially people can work from home.
4: और अंत में एक महत्वपूर्ण बात पर ध्यान देना जरूरी है। लोग अलग-अलग कारणों से करियर बदलने का फैसला करते हैं। कुछ लोग नए अवसर, बेहतर वेतन या अधिक संतोषजनक काम के लिए ऐसा करते हैं। कुछ लोगों को नकारात्मक परिस्थितियों जैसे खराब कार्य का वातावरण या बर्नआउट से बाहर निकलना होता है। अगर आप भी ऐसी स्थिति में हैं, तो डॉक्टर नाइट की एक सलाह आपके काम आ सकती है।
6: So if people are looking for a new career, that's a shame if you're sort of driven out of a career that potentially you would have loved because you've got so burnt out, you can't deal with that environment anymore. I've always advocate, you know, if you are feeling overwhelmed, to have, if you can, that initial discussion with the manager and say, hey, can we talk about this? You know, talk about some of the things that might be causing a problem. But if you feel like you don't fit the job, then definitely it's a good idea to move.
4: ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन्ड के इस अंश को SBS न्यूज से जोई थॉमडू और SBS हिंदी से प्रशाली जैन ने प्रस्तुत किया।
7: ये एक SBS ऑडियो पॉडकास्ट था। ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन्ड के और दूसरे पॉडकास्ट के लिए sbs.com.au/australiaexplained पर जाएं।
8: इस अंश के बाद अब वक्त कार्यक्रम में पहले अंतराल का। अंतराल के उस पार आपके लिए लेकर के आऊंगी सप्ताह भर की खबरों का एक बढ़िया सा न्यूज रैप। बने रहिए SBS हिंदी पर। आप सुन रहे हैं वृशाली को, जहां आज मैं और आप किशोर कुमार के गानों को डिस्कस कर रहे हैं। आप मुझे ये बता रहे हैं कि किशोर कुमार के कौन से ऐसे गीत हैं जो आपको बहुत पसंद है। 04397997667 हमारा नंबर है।

0: कीजिए मुझे संदेश, आज गीतों की रेलगाड़ी में वही गीत चलाएंगे। एक छोटा सा अंतराल, फिर हाजिर होती हूँ। कहीं भी मत जाइएगा, बने रहिएगा SBS हिंदी पर।
1: SBS ऑडियो ऐप आपके फोन पर प्रोग्राम और पॉडकास्ट सुनने का सबसे अच्छा तरीका है। SBS ऑडियो ऐप एकदम मुफ्त है, इसे ऐप स्टोर या गूगल प्ले से डाउनलोड करें। SBS स्पोर्ट, खेल प्रेमियों के लिए नंबर एक जगह। साइकिलिंग, मोटर स्पोर्ट, विश्व एथलेटिक्स और भी बहुत कुछ। sbs.com.au/sport पर जाएं।
2: SBS आपके तैयार होते ही तैयार है। Alexa, Google Home या Apple स्मार्ट स्पीकर के साथ जुड़े रहना आसान है। सुनिए ताजा खबरें, विचार और कहानियाँ SBS हिंदी से जब चाहें। बस कहें प्ले SBS हिंदी पॉडकास्ट। SBS ऑडियो, संगीत, रेडियो और पॉडकास्ट आपकी लय से मेल खाते हुए।
1: इनसाइट, SBS का पुरस्कृत करंट अफेयर्स। ये उन विषयों पर चर्चा करने से नहीं डरता जिन पर अन्य लोग बात नहीं करना चाहेंगे। हर मंगलवार 8:30 बजे SBS और ऑन डिमांड पर।
3: अच्छे शिक्षक हमेशा अपने छात्रों को प्रेरित करने के तरीकों की तलाश में रहते हैं। SBS लर्न में शिक्षकों के लिए पाठ्यक्रम से संबंधित ऑनलाइन संसाधन मौजूद हैं। sbs.com.au/learn पर जाएं।
4: Hi, I'm Janice Peterson from SBS World News, and I'm here to help you improve your English pronunciation. This short lesson is only about 5 minutes, so you can easily fit it into your day, perhaps on your lunch break.
5: SBS Learn English helps Australians speak, understand and connect.
0: ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है SBS हिंदी पर। आप सुन रहे हैं वृषाली को और मेरे पास आपके संदेश आने शुरू हो गए हैं। कुमार जी का संदेश है जो कह रहे हैं कि आई लाइक ऑल किशोर कुमार सॉन्ग्स बट आई लाइक द सॉन्ग ये दिल ना होता बेचारा। और ध्याना का संदेश आया है, ध्याना कह रही हैं कि कैन यू प्लीज़ प्ले तेरे जैसा यार कहाँ बाय किशोर कुमार फॉर माय मम। मैं ये दोनों गाने आपके लिए लेकर के आऊँगी, लेकिन फ़िलहाल हम रुक करते हैं सप्ताह भर की खबरों के एक बढ़िया से न्यूज़ रैप का जो मैं आपके लिए लेकर के आती हूँ हर रविवार को। और आज आप मुझे ये बता रहे हैं कि किशोर कुमार का कौन सा ऐसा गीत है जो आपको बहुत पसंद है। 04397997667 हमारा नंबर है।

साथ इसराइल ने रिहा किए कैद किए गए अंतर्राष्ट्रीय कार्यकर्ता। डिप्टीरिया आउटब्रेक पर डॉक्टरी समूह का कहना कि यह बनती जा रही है स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता की समस्या। और ऑकलैंड फुटबॉल क्लब ने ए लीग मेन ग्रैंड फाइनल जीतकर रचा इतिहास। और अब सप्ताह भर की खबरें विस्तार से। इस सप्ताह हिरासत में लिए जाने के बाद इजरायली अधिकारियों ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं को रिहा कर दिया है, जिनमें कुछ ऑस्ट्रेलियाई नागरिक भी शामिल हैं। ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला पर सवार इन कार्यकर्ताओं के साथ हुए व्यवहार को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाराजगी बढ़ी है, जिसके बाद कई देशों ने अपनी चिंताएं जताने के लिए इजरायली दूतों को तलब किया। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने कार्यकर्ताओं को जल्द से जल्द देश से निष्कासित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने इजरायल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री की भी आलोचना की है, जिनके कुछ वीडियो सामने आए थे जिनमें मंत्री हथकड़ी लगाए और घुटनों के बल बैठे हिरासत में लिए गए कार्यकर्ताओं का मजाक उड़ाते दिखाई दिए। रिहा किए गए ऑस्ट्रेलियाई कार्यकर्ताओं में से एक ने आरोप लगाया है कि हिरासत के दौरान 80 घंटे तक उन्हें भोजन और पानी नहीं दिया गया। हालांकि उन्होंने कहा कि यह स्थिति भी फिलिस्तीनियों के साथ होने वाली परिस्थितियों की तुलना में बहुत छोटी है। कैट्रियोना ग्राम का कहना रहा कि हिरासत के दौरान उनके और अन्य लोगों के साथ किया गया व्यवहार अपमानजनक था। इस बीच इसराइल के ऑस्ट्रेलिया में राजदूत ने गाजा सहायता फ्लोटिला से जुड़े कार्यकर्ताओं के साथ अपने देश के व्यवहार का बचाव किया है। उनका कहना है कि कार्यकर्ताओं के साथ संवेदनशील तरीके से व्यवहार किया गया था, लेकिन बाद में इसराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन गवीर की कार्रवाई ने विवाद खड़ा कर दिया था। ऑस्ट्रेलिया में इसराइल के राजदूत हिलेल न्यूमैन का कहना है कि इस मामले पर आवश्यक कार्रवाई की जा चुकी है। दूसरी ओर मीडिया रिपोर्टों के अनुसार तथाकथित इस्लामिक स्टेट यानी आईएस समूह से जुड़े कुछ और ऑस्ट्रेलियाई महिलाएं और बच्चे सीरिया से निकल चुके हैं। बताया जा रहा है कि ये समूह अलरोज शरणार्थी शिविर छोड़ चुका है और अब सीरिया की राजधानी दमिश्क की ओर बढ़ रहा है, जहां से उनके ऑस्ट्रेलिया लौटने की संभावना है। इससे पहले मई की शुरुआत में 4 महिलाएं और 9 बच्चे लगभग 2 सप्ताह दमिश्क में रहने के बाद सिडनी और मेलबर्न पहुंचे थे। ऑस्ट्रेलियाई सीमा बल ने देश पहुंचने पर 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया था। इनमें से 2 पर गुलामी से जुड़े आरोप लगाए गए हैं, जबकि एक अन्य महिला पर एक आतंकवादी संगठन में शामिल होने और घोषित संघर्ष क्षेत्र की यात्रा करने का आरोप लगाया गया है। और अब बात डिप्टीरिया के प्रकोप की। ऑस्ट्रेलियन इंडिजिनस डॉक्टर्स एसोसिएशन का कहना है कि डिप्टीरिया के बढ़ते आउटब्रेक को केवल बीमारी नियंत्रण के मुद्दे के रूप में नहीं, बल्कि समान स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता के मुद्दे के रूप में भी देखा जाना चाहिए। शुक्रवार तक ऑस्ट्रेलिया भर में डिप्टीरिया के 230 से अधिक मामले दर्ज कर लिए गए थे, जिनमें अधिकांश मामले अबोरिजिनल समुदायों से जुड़े हैं। ये संख्या सामान्य वार्षिक औसत से लगभग 30 गुना अधिक है और राष्ट्रीय रिकॉर्ड शुरू होने के बाद से सबसे बड़ा आउटब्रेक माना जा रहा है। संस्था का कहना है कि स्थिति के पीछे प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में कमी, टीकाकरण के बाद निगरानी में अंतर और दूरदराज तथा क्षेत्रीय समुदायों में स्वास्थ्य सेवाओं की सीमित उपलब्धता जैसे कारण शामिल हैं। नेशनल अबोरिजिनल कम्युनिटी कंट्रोल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की चिकित्सा सलाहकार मेगन कैंपल का कहना है कि खराब आवास व्यवस्था भी एक बड़ी समस्या है, जिसमें कई लोगों को बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं और स्वच्छ जीवन स्थितियों तक पर्याप्त पहुँच नहीं मिल पाती। दूसरी ओर साउथ ऑस्ट्रेलिया सरकार का कहना है कि राज्य चुनाव की आगामी समीक्षा में फर्स्ट नेशंस वॉइस टू पार्लियामेंट के मतदान प्रक्रिया की जांच की जाएगी। ये फैसला उन आरोपों के बाद लिया गया जिनमें कहा गया कि कुछ इंडिजिनस मतदाताओं को मतदान केंद्रों पर अपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़ा और उनकी इंडिजिनस पहचान पर सवाल उठाए गए। वहीं निर्वाचित वॉइस सदस्य डेब मॉयल ने दावा किया है कि कुछ फर्स्ट नेशंस लोगों को मतदान के अधिकार से भी वंचित किया गया। साउथ ऑस्ट्रेलिया के फर्स्ट नेशंस वॉइस टू पार्लियामेंट चुनाव में केवल 11% इंडिजिनस मतदाताओं ने मतदान किया था। राज्य के प्रीमियर पीटर मालिनोस्किस का कहना है कि चुनाव प्रक्रिया की गहन समीक्षा की जा रही है। और अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। ऐसे समय में जब फिलिस्तीनियों के खिलाफ हिंसा को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं,
यूनाइटेड किंगडम ने एक संयुक्त बयान जारी करते हुए इसराइल से वेस्ट बैंक में तथाकथित बस्तियों के अवैध विस्तार को रोकने की अपील की है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर के कार्यालय ने बताया कि इस बयान पर ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इटली, फ्रांस, कनाडा, न्यूजीलैंड, नॉर्वे और नीदरलैंड्स ने भी हस्ताक्षर किए हैं। इन देशों ने व्यवसायों से भी अपील की है कि वे E1 सेटलमेंट विकास क्षेत्र से जुड़ी निर्माण परियोजनाओं के लिए निविदाओं में भाग ना लें। ये बयान ऐसे समय पर आया है जब यूनाइटेड नेशंस के प्रवक्ता स्टीफान डुजारिक ने इजरायली बस्ती हिंसा को लेकर बढ़ती चिंताओं का उल्लेख किया था। और अब खबरें भारत से। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूरोप दौरे ने इस सप्ताह काफी ध्यान खींचा। प्रधानमंत्री ने इटली और नीदरलैंड्स का दौरा किया, जहां बुनियादी ढांचा सहयोग, निवेश और वैश्विक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा हुई। वहीं इस दौरान एक प्रेस संवाद भी चर्चा में रहा, जिसके बाद मीडिया संवाद को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहस देखने को मिली। इस बीच भारत और अमेरिका संबंधों को लेकर भी गतिविधियां तेज रहीं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत पहुंचे, जहां व्यापार और रणनीतिक साझेदारी को लेकर चर्चा हुई। क्वाड सहयोग को लेकर भी बातचीत महत्वपूर्ण रही। आर्थिक मोर्चे पर सरकारी ईंधन कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक और बढ़ोतरी की। विशेषज्ञों का कहना है कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष का असर अब घरेलू परिवहन और ऊर्जा लागत पर दिखाई दे रहा है। देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। उत्तर, पश्चिम और मध्य भारत के कई इलाकों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच रहा है, जिससे स्वास्थ्य और

0: बिजली मांग को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं। वहीं आरएसएस से जुड़े कुछ विचारकों ने भारत और पाकिस्तान के बीच औपचारिक बातचीत फिर शुरू करने की संभावना पर विचार करने की बातचीत कही है। और मनोरंजन जगत में मॉडल और अभिनेत्री त्विशा शर्मा की मृत्यु का मामला चर्चा में है। मामले में फिलहाल उनके पति समर्थ सिंह फरार हैं और पुलिस उनको पूछताछ के लिए ढूंढ रही है, जबकि घटना को लेकर अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं। और अंत में खबरें खेल जगत से। ऑकलैंड फुटबॉल क्लब ने इतिहास रचते हुए ए लीग मेन ग्रैंड फाइनल का खिताब अपने नाम कर लिया है। टीम ने फाइनल मुकाबले में सिडनी फुटबॉल क्लब को 1-0 से हराया। मैच का एकमात्र और निर्णायक गोल 60वें मिनट में कैम हॉविसन ने किया। ऑकलैंड एफसी ए लीग पुरुष ग्रैंड फाइनल जीतने वाली पहली न्यूजीलैंड टीम बन गई है। ये जीत 28,000 से अधिक घरेलू दर्शकों की मौजूदगी में दर्ज की गई। इस जीत के साथ कोच स्टीव कॉरेसा ए लीग में 3 चैंपियनशिप खिताब जीतने वाले पहले कोच भी बन गए हैं। इसी के साथ ये न्यूज रैप यहीं समाप्त होता है।
1: और दोस्तों, इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाओ उससे पहले भाई, हमारी ध्याना ने एक गीत अपनी ममा के लिए हमसे रिक्वेस्ट किया था, जो मैं आपके लिए लेकर के आ रही हूँ ध्याना।

0: अंतराल का, अंतराल के उस पार करेंगे फिल्मी डायरी में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की चर्चा, तो बने रहिए SBS हिंदी पर।
1: SBS स्पोर्ट, खेल प्रेमियों के लिए नंबर एक जगह, साइकिलिंग, मोटर स्पोर्ट, विश्व एथलेटिक्स और भी बहुत कुछ। sbs.com.au/sport पर जाएं। SBS ऑडियो ऐप आपके फोन पर प्रोग्राम और पॉडकास्ट सुनने का सबसे अच्छा तरीका है। SBS ऑडियो ऐप एकदम मुफ्त है, इसे ऐप स्टोर या गूगल प्ले से डाउनलोड करें।
2: जानिए SBS के टीवी और रेडियो चैनलों पर क्या चल रहा है और क्या आने वाला है। sbs.com.au/guide पर जाएं।
1: SBS Chill पर दुनिया भर के संगीत के साथ आराम करें। SBS Chill सुनने के लिए SBS Audio ऐप पर जाएं।
2: आपके लिए लेकर आए हैं पुरस्कार विजेता नाटक, अंतर्राष्ट्रीय खेल और वृत्त चित्रों की दुनिया। SBS विविधताओं का एक संसार। देखिए SBS अपनी टीवी पर चैनल 30 और SBS वाइसलैंड चैनल 31 पर।
3: SBS South Asian brings you closer to South Asia. News in 10 languages, the SBS Spice podcast, and the hottest tracks on SBS South Asian radio. There is so much to explore. Check it out now on the SBS audio app or website.
2: SBS World News, breaking news aur ubharti hui kahaniyan jo aapke liye maayne rakhti hain, Australia aur duniya bhar se. Dekhiye SBS World News har raat 6:30 baje SBS aur SBS on demand par.
1: Inside SBS का पुरस्कृत करंट अफेयर्स, ये उन विषयों पर चर्चा करने से नहीं डरता जिन पर अन्य लोग बात नहीं करना चाहेंगे। हर मंगलवार 8:30 बजे SBS और ऑन डिमांड पर।
4: क्या आपको SBS हिंदी सुनना अच्छा लगता है? अपनी बातचीत हमसे जारी रखिए हमारे फेसबुक पेज पर। हमारा पेज लाइक करें। SBS हिंदी फेसबुक पर भी है।
2: जानिए SBS के टीवी और रेडियो चैनलों पर क्या चल रहा है और क्या आने वाला है। sbs.com.au/guide पर जाएं।
0: ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है SBS हिंदी पर। आप सुन रहे हैं वृशाली को और मेरे पास जफर साहब का संदेश आया है जो कह रहे हैं, हाय वृशाली, वेरी नाइस प्रोग्राम इज ऑलवेज, आई लाइक योर एनर्जेटिक वॉइस, थैंक यू सो मच। माय फेवरेट किशोर कुमार सॉन्ग इज चला जाता हूँ, मैं कोशिश करूँगी आपके लिए ज़रूर लेकर के आऊँ। और सुरेंद्र चावला जी क्रिनबर्न से कह रहे हैं, ओ मेरे दिल के चैन, मैं वो भी कोशिश करूँगी। और कुमार साहब कह रहे हैं कि उन्होंने मेरे सपनों की रानी किसी के लिए गाया भी है, बहुत खूबसूरत बात है ये। तो ये सारे गीतों की रिक्वेस्ट मेरे पास है, जितने आज मैं लेकर आ पाऊँगी आपके लिए ज़रूर लेकर के आऊँगी। लेकिन फ़िलहाल मैं और आप मिलकर के रुक करते हैं फिल्मी डायरी का, जहाँ हम चर्चा करेंगे दीपिका पादुकोण की।
5: SBS रेडियो हिंदी के प्रोग्राम फिल्मी डायरी में आपका स्वागत है। मैं हूं कात्यायनी। बॉलीवुड की जिस अदाकारा की आज हम बात करने जा रहे हैं, इस एक्ट्रेस के माँ, पिता और बहन के नाम का मतलब है लाइट। उन्हें मॉडलिंग के दिनों से ही सेक्सीएस्ट वुमेन ऑफ द ईयर और द हॉटेस्ट गर्ल ऑन अर्थ का खिताब दिया गया था। उन्होंने नेशनल लेवल तक बैडमिंटन खेला है। हिंदी सिनेमा की इस मस्तानी की छवि उन लोगों में से है जो गलत को गलत और सही को सही बोलने का दम रखते हैं।

दीपिका पादुकोण का जन्म 5 जनवरी 1986 को कोपेनहेगन डेनमार्क में हुआ था। उनके पिता प्रकाश पादुकोण हैं, जो कि मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी रहे हैं। उनकी माँ का नाम उज्ज्वला है। उनकी एक छोटी बहन भी है जिनका नाम अनीशा है। जब दीपिका 11 महीने की थी तभी परिवार बेंगलुरु शिफ्ट हो गया। दीपिका की शुरुआती पढ़ाई बेंगलुरु के सोफिया हाई स्कूल से हुई है और इसके बाद की पढ़ाई उन्होंने माउंट कैरमल कॉलेज से पूरी की। समाज शास्त्र में बीए की डिग्री के लिए उनका दाखिला इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में हुआ था, लेकिन मॉडलिंग में करियर बनाने के चलते उन्होंने इसे छोड़ दिया। मॉडलिंग में आने से पहले दीपिका पिता की तरह ही बैडमिंटन में हाथ आजमा रही थीं। उन्होंने नेशनल लेवल तक बैडमिंटन खेला है, लेकिन मॉडलिंग के 2 साल बाद फिल्मों के ऑफर मिलने लगे। दीपिका बैडमिंटन के करियर को छोड़कर हीरोइन बनना चाहती थीं। उस वक्त उनके मम्मी पापा ही थे जो उनके सपोर्ट में थे। दीपिका मुंबई आना चाहती थीं और सबसे पहले उन्हें पोर्टफोलियो शूट करवाना था, जिसके लिए काफी पैसे की जरूरत थी। तब दीपिका ने अपनी माँ से 10,000 रुपए मांगे थे और वापस लौटाने का वादा भी किया था। जब दीपिका पादुकोण बैकग्राउंड मॉडल हुआ करती थी, उसी दौरान की एक फोटो वायरल हुई थी जिसमें फरदीन खान शो स्टॉपर हैं और दीपिका बैकग्राउंड मॉडल के तौर पर उनके काफी पीछे नजर आ रही हैं। ये फोटो फिल्म नो एंट्री के बाद हुए एक इवेंट की थी। वो हिमेश रेशमिया द्वारा गाए गए संगीत वीडियो नाम है तेरा में दिखाई दी। उन्होंने अनुपम खेर के अभिनय संस्थान में अभिनय सीखना शुरू किया और 2006 में उन्होंने कन्नड़ फिल्म ऐश्वर्या से अभिनय की शुरुआत की। डायरेक्टर फराह खान अपनी फिल्म ओम शांति ओम के लिए नया चेहरा तलाश रही थीं। फराह ने मलाइका अरोड़ा से कहा कि वे उन्हें शाहरुख के ऑपोजिट किसी नई मॉडल का नाम सुझाएं। मलाइका ने इस बारे में अपने दोस्त डिजाइनर वेंडल रॉड्रिक्स को बताया। दीपिका ने उस वक्त वेंडल के लिए लैक्मे फैशन वीक में वॉक किया था, तो वेंडल रॉड्रिक्स ने दीपिका पादुकोण को फिल्म में कास्ट करने की सलाह दी। मलाइका को दीपिका पसंद आई और उन्होंने उन्हें फराह खान को रिकमेंड कर दिया। दीपिका के हिंदी फिल्मी करियर की शुरुआत ब्लॉकबस्टर फिल्म ओम शांति ओम से हुई थी, जिसमें उनके हीरो शाहरुख खान थे। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल किया और फिल्म सुपरहिट हो गई और यहीं से दीपिका की गाड़ी चल निकली। इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला।

हालांकि इसके बाद उनको कई फिल्मों में असफलता का भी सामना करना पड़ा, लेकिन दीपिका ने कभी हार नहीं मानी। फिल्म कॉकटेल उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट रही। इस फिल्म में उनके अभिनय की काफी प्रशंसा हुई। वो अब तक कई सुपरहिट फिल्में दर्शकों को दे चुकी हैं।

दीपिका पादुकोण अपनी लव लाइफ को लेकर खासा चर्चा में रही थी। कभी उनका नाम युवराज सिंह के साथ जुड़ा तो कभी MS धोनी के साथ। फिर रणबीर कपूर संग इनकी लव स्टोरी तो जग जाहिर है। दीपिका की जिंदगी के तार बिजनेसमैन विजय माल्या के बेटे सिद्धार्थ माल्या से जुड़े, फिर ब्रेकअप हो गया। साल 2008 में फिल्म बचना है हसीनों के दौरान दीपिका ने रणबीर कपूर को डेट करना शुरू किया। महज एक साल में ही ये जोड़ी टूट गई। दीपिका पादुकोण ने रणवीर सिंह के साथ अगस्त 2012 में डेटिंग शुरू की थी। दोनों ने 2018 में अपनी शादी की घोषणा की। दीपिका पादुकोण की शादी रणवीर सिंह से 14 नवंबर 2018 को संपन्न हुई। इस जोड़े ने इटली लेक कोमो में पारंपरिक कोंकणी हिंदू और सिख आनंद कारज समारोह में शादी कर ली। कपल ने शादी के 6 साल बाद 8 सितंबर 2024 को एक बेटी का स्वागत किया था जिसका नाम है दुआ। अब 2 साल बाद दीपिका दोबारा मां बनने जा रही हैं।

ओम शांति ओम के अलावा उनकी कुछ सबसे बेहतरीन और सुपरहिट फिल्मों में लव आजकल, हाउसफुल, कॉकटेल, ये जवानी है दीवानी, चेन्नई एक्सप्रेस, गोलियों की रासलीला, रामलीला, पीकू, बाजीराव मस्तानी, पद्मावत, छपाक और पठान आदि प्रमुख हैं।

दीपिका पादुकोण को ओम शांति ओम के लिए बेस्ट फीमेल डेब्यूटेंट का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इसी फिल्म के लिए दीपिका को इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड यानी IIFA के बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस से भी सम्मानित किया गया। फिल्म गोलियों की रासलीला के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। फिल्म पीकू के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का आईफा अवार्ड मिला।

दीपिका पादुकोण को आखिरी बार अजय देवगन की फिल्म सिंघम अगेन में देखा गया था। हालांकि दीपिका के पास अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की लंबी लिस्ट है। वो शाहरुख खान की मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म किंग और अल्लू अर्जुन की अपकमिंग मूवी राका में मुख्य भूमिकाएं निभाएंगी। SBS रेडियो हिंदी के प्रोग्राम फिल्मी डायरी में आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।

और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के लिए ब्रेक पर जाऊं उससे पहले राजेंद्र वोरा जी के दो संदेश आए मेरे पास। वे गाना सुनना चाहते हैं दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना, और दूसरा गाना जो उन्होंने बताया है

0: तू कहे तो मैं बता दूं, मिलाने की बिल्कुल कोशिश करूंगी। फिलहाल ले रही हूँ एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के उस पार गीतों की नॉनस्टॉप रेलगाड़ी लेकर के हाजिर होती हूँ। कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा SBS हिंदी पर।
1: NITV पर जानें उन मुद्दों के बारे में जो एबोरिजिनल और टॉरस स्ट्रेट आइलैंडर लोगों के लिए मायने रखते हैं। देखें NITV चैनल 34 और SBS ऑन डिमांड पर। अच्छे शिक्षक हमेशा अपने छात्रों को प्रेरित करने के तरीकों की तलाश में रहते हैं। SBS लर्न में शिक्षकों के लिए पाठ्यक्रम से संबंधित ऑनलाइन संसाधन मौजूद हैं। sbs.com.au/learn पर जाएं। आपके लिए लेकर आए हैं पुरस्कार विजेता नाटक, अंतर्राष्ट्रीय खेल और वृत्त चित्रों की दुनिया। SBS विविधताओं का एक संसार। देखिए SBS अपनी टीवी पर चैनल 30 और SBS वाइसलैंड चैनल 31 पर। SBS वर्ल्ड न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज और उभरती हुई कहानियाँ जो आपके लिए मायने रखती है ऑस्ट्रेलिया और दुनिया भर से। देखिए SBS वर्ल्ड न्यूज हर रात 6:30 बजे SBS और SBS ऑन डिमांड पर। डेडलाइन पर दुनिया भर के लोग और कहानियाँ, SBS का पुरस्कार विजेता वृत्त चित्र शो। देखिए डेडलाइन मंगलवार 9:30 बजे SBS पर और किसी भी समय SBS ऑन डिमांड पर।
2: SBS स्पोर्ट, खेल प्रेमियों के लिए नंबर एक जगह। साइकिलिंग, मोटर स्पोर्ट, विश्व एथलेटिक्स और भी बहुत कुछ। sbs.com.au/sport पर जाएं। SBS हिंदी हर समय उपलब्ध है, जब भी आप चाहें किसी भी मोबाइल पर हमारे पॉडकास्ट बिल्कुल मुफ्त सुने। sbs.com.au/hindi पर जाएं या SBS ऑडियो ऐप डाउनलोड करें।
3: Learn to speak English. Find videos, podcasts and advice to help you settle into daily life in Australia. Speak everyday Aussie with SBS Learn English.
0: ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है SBS हिंदी पर। आपके पसंद के गीतों की रेलगाड़ी में शुरू कर रही हूँ, उससे पहले बस शुरू कर रही हूँ, लेकिन मेरे पास एकता, मनीष, रिदम और युवीर का संदेश आया। नमस्ते वृषाली जी, एंजॉइंग लिसनिंग टू यू इन योर प्रोग्राम। वी द फुल फैमिली आर ड्राइविंग एंड लिसनिंग टू योर प्रोग्राम। ड्राइव सेफ, बी हैप्पी। ठंड का मौसम, कार में सबका साथ और वृषाली की मधुर आवाज़। आर किशोर कुमार फेवरेट नंबर इज आ देखें जरा, मिलाने की कोशिश करती हूँ।

और जफर साहब की इस फरमाइश के साथ आज के कार्यक्रम के लिए कह रही हूँ अलविदा। अपना बेहद ध्यान रखिएगा, उसमें कोई कोताही मत बरतिएगा। फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

0: SBS South Asia. Your news from here and hits from home.
1: दूध उबालोगे तो झाग लगेगी और जो सावन में ऐसे नाचोगी तो आग लगेगी।

0: Foundation. Your news from here and hits from home.
1: प्यार की तरंगे सरगम बन जाती है, संगीत के हजारों धुनें गूंजने लगती हैं।

0: South Asian.
1: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है. हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए.

0: hit.
1: After hit.
0: After hit. This is SBS South Asian. Ooh, la, la.

नहीं बस एक खराबी है आदत से नहीं।

झूमे गाओ हरेला ऊंचा पाओ यू पटका है ये देसी घमेला कैसा रहा यका यकी नाचो नाचो नाचो, नाचो।